आज हम महेश भट्ट को याद कर रहे हैं, कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में। और महेश भट्ट के काम को सम्मान भी मिला, उन्हें कई जो है फिल्म फेयर पुरस्कार मिले, उन्हें राष्ट्रीय अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। लेकिन निर्देशन के साथ साथ वो निर्माता भी रहे। अपने भाई मुकेश भट्ट के साथ मिलकर उन्होंने विशेष फिल्म्स के जरिए कई कामयाब फिल्में बनाई, जिसमें राज की बात कर सकते हैं, जिस्म है, मर्डर है, गैंगस्टर है, इस तरह की फिल्में रहीं जिसमें संगीत केंद्रित सिनेमा को उन्होंने जगह दी। महेश भट्ट के फिल्मी सफर को देखें तो इसके कई रंग दिखाई देते हैं, जहां संघर्ष है, शोहरत है, कामयाबी है, विवाद है, गंभीर फिल्में हैं, रोमांस है और संगीत से भरी हुई कहानियां हैं। लेकिन इन सबके ऊपर है उनकी अपनी एक आवाज। वो एक ऐसे फिल्मकार रहे जिन्होंने बार बार इंसान के रिश्तों और उसके अंदर की दुनिया को अपनी कहानियों का हिस्सा बनाया। 1974 से निर्देशन में शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर लेखन, निर्माण और टेलीविजन तक पहुंचा। 90 का दशक उनकी लोकप्रियता का वो दौर रहा और बाद के वर्षों में उन्होंने निर्देशन से ज्यादा फिल्म निर्माण पर ध्यान दिया। तो फिल्म पापा कहते हैं से ये खूबसूरत गीत आपके लिए।

सीरियन में 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज पर और साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबांग केंद्र है। आशक संवाद 1947 भाद्रपद माह की आठवीं तिथि तदनुसार सन 2026 सितंबर महीने की दिनांक 19 और दिन है शनिवार। श्रोताओ अब से लेकर प्रसारण के अंत तक यानी रात्रि के 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे प्रसारण निष्पादक श्री संगे बोम्पा सरतेगपा, कंट्रोल रूम में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री तानिंग तको और श्री लामसिंग, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री हेमंता स्वर्गरे, मुनपा में उद्घोषक श्री कुंजो संगे की तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका कार्मो। हम सभी आप तमाम श्रोताओं का आज के इस प्रसारण में स्वागत करते हैं।

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओ, हमारे केंद्र से आज के तमाम कार्यक्रम आरंभ होते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले आप सुनिए

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित दोपहर के ठीक 2 बजे मिड डे न्यूज तथा 2:15 पर सुनिएगा दोपहर समाचार। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: where the legendary singer was cremated to offer their respects and celebrate his enduring legacy. During his 33-year musical career, Zubeen Garg recorded over 40,000 songs across nearly 40 languages and dialects, reflecting his remarkable versatility and wide appeal. On to sports. The grand opening ceremony of the 20th edition of the Asian Games 2026 will start at the Paloma Mizuho Stadium in Aichi, Nagoya, Japan today at 2:30 p.m. India time. Double Olympic medalist Manu Bhakar and shot putter Tajinder Pal Singh Tur will be India's flag bearers at the opening ceremony. The Asian Games will run from today to 4th of October, with more than 500 Indian athletes set to compete across 37 sports. The Indian contingent will feature 5 individual Olympic medalists, despite the withdrawal of defending javelin throw champion Neeraj Chopra due to an ankle injury. PV Sindhu will spearhead the badminton campaign, while Mirabai Chanu leads the weightlifting contingent. Shooting will feature Manu Bhakar, Lavlina Borgohain will compete in boxing, and Aman Sehrawat will represent India in wrestling. The India Meteorological Department, or IMD, has predicted heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Mahe, Madhya Maharashtra, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana tomorrow. The Met Department has predicted thunderstorms and lightning over Marathwada, sub-Himalayan West Bengal, East Rajasthan, Jharkhand, Goa, Odisha and parts of northeastern India tomorrow. Heavy to very heavy rainfall is also likely to prevail over Andaman and Nicobar Islands today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says free trade agreements are opening new doors of opportunities for the country's youth, distributes more than 51,000 appointment letters at 20th Rozgar Mela. Prime Minister Modi says India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average, highlights India is the only country in G20 that fulfilled commitments made at COP21 ahead of schedule. Government to train 34,000 rural youth under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most states and union territories. India dispatches 11 tons of fresh relief material to flash flood recovering Nepal. UN warns Pakistan against forcibly deporting Afghan refugees, also raises concerns over a directive requiring medical institutions to remove Afghan students. Assam remembers iconic singer-composer Zubeen Garg on his death anniversary and 20th Asian Games to begin in Japan this afternoon. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath main Jagriti Sharma. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आईची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
2: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं।

0: सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं जिससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।
0: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में करीब आधे टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में हैं। श्री मोदी ने कहा कि गांव, कस्बों और छोटे शहरों के युवा देश की नई अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार सृजन और भर्ती के आकलन से पता चला है कि सरकारी नियुक्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है। 20वां रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। नवनियुक्त युवा वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रक्षा सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज केरलम के एर्नाकुलम में 2 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेलों का उद्घाटन किया। ये मेले 20वें राष्ट्रव्यापी रोजगार मेले के अंतर्गत आयोजित किए गए। श्री चौधरी ने कहा कि लोगों के सामूहिक प्रयासों से वर्ष 2047 से पहले ही विकसित भारत का सपना साकार किया जा सकता है। श्री सुरेश गोपी ने कहा कि रोजगार राष्ट्र निर्माण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
0: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
0: भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। नॉन फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी कैपेसिटी, कार्बन एमिशन पर रोकथाम, हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है।
1: श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
0: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा प्राणियों के प्रति करुणा रखने के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के महत्व का

0: उल्लेख किया। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक है। श्री यादव ने वनों, घास के मैदानों और आर्द्र भूमि के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया।
1: भारत ने मैंग्रोव यानी समुद्र तटों पर उगने वाले पेड़ों और वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ तटीय समुदायों की आजीविका मजबूत करने के लिए मिष्टी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत मैंग्रोव क्षेत्रों को फिर से विकसित करने, नए पौधे लगाने और स्थानीय लोगों की भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
2: लाइवलीहुड एंड इकोलॉजिकल रेजिलियंस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि ये नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की गई हैं। निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 5 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि एक एक न्यायाधीश को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त किया गया है। मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को झारखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 3 न्यायाधीशों को कर्नाटक उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि वर्तमान में विश्व के सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यबल का लगभग 20% हिस्सा भारत में है। श्री कृष्णन ने कहा कि सरकार ने डिजाइन प्रतिभा पर विशेष बल दिया है और लगभग 85,000 डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम जारी है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार कौशल विकास के सभी पहलुओं को प्राथमिकता देगी, जिसमें सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फोरेंसिक सामग्री, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले जाने वाला ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल को सहायता करना जारी रखेगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक सेवा को समर्पित 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने और देश सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है अग्निपथ योजना। इस विशेष श्रृंखला में आज हम अग्निपथ योजना के अंतर्गत युवाओं को मिल रहे नए अवसरों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
4: युवाओं को देश की सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की। इसके तहत सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। अग्निवीर 4 वर्ष तक सेवा करते हैं और इस दौरान उन्हें सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और विभिन्न कौशल का अनुभव मिलता है। उत्तराखंड की सैन्य परंपरा में युवाओं की सेना में सेवा की विशेष भूमिका रही है। अग्निपथ योजना के तहत राज्य के युवा भी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष फरवरी और मार्च में चंपावत के बनबसा में आयोजित आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। चार वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद प्रत्येक बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत

0: सशस्त्र सेनाओं के नियमित कैडर में शामिल किए जाने का प्रावधान है। अन्य अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज और कौशल प्रमाण पत्र दिया जाता है। उत्तराखंड में सेवा मुक्त अग्निवीरों के लिए वर्ष 2025 में समूह गा की विभिन्न वर्दीधारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें पुलिस, अग्निशमन, कारागार, वन आबकारी और सचिवालय रक्षक जैसे पद शामिल हैं। निर्धारित शर्तों के अनुसार उन्हें आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट का प्रावधान है। संतोष थपलियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक और विज्ञान सचिव श्री एम गणेश पिल्लई ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों पर आकाशवाणी से विशेष बातचीत की है।
2: इंडिया स्पेस प्रोग्राम,
3: भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने संचार, नौवहन, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और कृषि सहित राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसरो, गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्र अभियान और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों पर काम कर रहा है।
2: प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन एंड लूनर लैंडिंग।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है और अधिकारियों से कहा है कि शरणार्थियों को निर्वासित करने से पहले ये आकलन किया जाना चाहिए कि क्या अफगानिस्तान में ऐसे लोगों को उत्पीड़न, यातना या अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का खतरा है। विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के चिकित्सा और दंत चिकित्सा संस्थानों को अफगान छात्रों को वापस भेजने के निर्देश पर भी चिंता व्यक्त की। रिपोर्ट के अनुसार 100 अफगान छात्र, जिनमें से 20 से 40 महिलाएं शामिल हैं, इससे प्रभावित हैं। असम के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और सांस्कृतिक हस्ती जुबिन गर्ग की आज पुण्यतिथि है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 17 सितंबर से 3 दिन का जुबिन दिवस भी मनाया जा रहा है। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आइची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे मीडिया न्यूज तथा दोपहर समाचार। मीडियम में 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। डीजे अब सुने भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। भक्ति गीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए पंडित जसराज से चंद हिंदी भक्ति गीत। डीजे श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओ, इस वक्त आप चंद भक्ति गीतों का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला भक्ति गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंडित जसराज के स्वर में चंद हिंदी भक्ति गीत। इसी के साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यही पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा इस संदेश के बाद।
1: अरुणाचल प्रदेश के क्रिएटर्स सुनो, आपके होम टाउन की वाइब एकदम नेक्स्ट लेवल है। पहाड़, कल्चर, खाना, ट्रेडिशंस और ढेर सारी स्टोरीज। अब टाइम है अपनी स्टोरी को इंडिया के स्टेज तक ले जाने का। जुड़िए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज से और बनाइए 1 से 3 मिनट की वीडियो जो बताए कि आपका जिला कितना यूनिक है। और हाँ, प्राइज भी जबरदस्त है। डिस्ट्रिक्ट विनर्स 50,000, स्टेट विनर्स 2 लाख रुपए और नेशनल विनर्स 5 लाख रुपए। बस वेव्स OTT पे रजिस्टर करें, माई वेव्स पर जाकर क्रिएटर प्रोफाइल बनाएं और अपनी वीडियो सबमिट करें। अरुणाचल के क्रिएटर्स, कैमरा उठाओ और अपनी स्टोरी दिखाओ।
0: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के ठीक 3 बज चुके हैं। डीजे अब सुनिए अलग अलग प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। अलग अलग प्रांत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए चंद अपतानी आधुनिक गीत। इसके गायक कलाकार है हागे तादा, रूबू अन्या ताई तन्यो, तेलिंग याजी और

श्रोताओं, इस वक्त आप चंद अपतानी आधुनिक गीतों का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को यूं ही आगे बढ़ाते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत।

0: श्रोताओं, इसी आपातानी आधुनिक गीतों के साथ ही विभिन्न प्रांतों की गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब यहीं पर समाप्त हुआ। मीडियम एफ 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। डीजे पेश है कार्यक्रम मेरी बात। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवंग के 11वीं कक्षा की छात्र मिस पेमा छेकी से मेरा शोक और इसने मुझे क्या सिखाया है विषय पर चंद शब्द।
1: आकाशवाणी तवंग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं पेमा छोकी पीएम श्री जेनवी तवंग में कक्षा 11वीं मानविकी में पढ़ती हूँ। आज इस कार्यक्रम में मेरी वार्तालाप का विषय मेरा शौक और इसने मुझे क्या सिखाया है। जो किताब दिल को छू जाए वो दोस्त बन जाती है। पढ़ने वाले की शख्सियत में चार चांद लगाती है। ना कोई शिकायत ना कोई मांग, किताबें ही तो है जो उम्र भर साथ निभाती है। हर व्यक्ति का जीवन में कोई ना कोई शौक अवश्य होता है। शौक हमारे जीवन को आनंद, ऊर्जा और सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं। शौक न केवल हमें मानसिक सुख देते हैं, बल्कि हमारे व्यक्तित्व के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेरा शौक पुस्तक पढ़ना है। मुझे खाली समय में विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। बचपन से ही मुझे कहानियाँ पढ़ने का शौक रहा है। धीरे धीरे यह शौक आदत में बदल गया। मैं कहानी की किताबों के साथ साथ उपन्यास, जीवनी, प्रेरणादायक पुस्तकें और सामान्य ज्ञान से जुड़ी किताबें भी पढ़ती हूँ। पुस्तकें मुझे एक नई दुनिया से परिचित कराते हैं और मेरे ज्ञान को भी बढ़ाते हैं। पुस्तक पढ़ने से मेरी भाषा में बहुत सुधार हुआ है। मेरे शब्द कोश में नए शब्द जुड़े हैं और मेरे लेखन क्षमता भी बेहतर हुई है। इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है और मैं अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाती हूँ। किताबें पढ़कर मेरी कल्पना शक्ति भी विकसित हुई है। मेरे एक शौक ने मुझे कई महत्वपूर्ण जीवन मूल्य सिखाया है। इसने मुझे अनुशासन

0: सिखाया है, क्योंकि नियमित रूप से पढ़ने के लिए समय प्रबंधन आवश्यक होता है। इसने मुझे धैर्य रखना सिखाया है, क्योंकि हर पुस्तक को समझने के लिए एकाग्रता की जरूरत होती है। पुस्तकें पढ़ने से मुझे अच्छे और बुरे में अंतर समझ में आया है। महापुरुषों की जीवनी पढ़कर मुझे ईमानदारी, मेहनत और संघर्ष का महत्व समझ में आया। कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच बनाए रखने की प्रेरणा मुझे किताबों से ही मिली है। मेरा शौक मुझे बुरी आदतों से दूर रखता है और खाली समय का सही उपयोग करना सिखाता है। जब मैं उदास या तनाव में होती हूँ, तब पुस्तकें मेरा मन शांत कर देती है। वे मेरी सच्ची मित्र है, जो हर समय मेरा साथ देती है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि शौक जीवन को सुंदर और आशापूर्ण बनाते हैं। हर एक किताब एक नई दुनिया दिखाती है, खामोश रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवंग के 11वीं कक्षा की छात्र मिस पेमा चौकी से मेरा शौक और इसने मुझे क्या सिखाया है विषय पर चंद शब्द। इसी के साथ ही कार्यक्रम मेरी बात अब यहीं पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम सुनेगा इस संदेश के बाद।
2: दर्शकों, खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
3: RBI कहता है, किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
1: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3:33 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। इस कार्यक्रम का पहला नगमा हमने लिया है फिल्म आयशा से। अमित त्रिवेदी, जसलीन नकाश अजीज और ऐश किंग के स्वरों में। जावेद अख्तर द्वारा संगीत पद पर इसे लिखा है अमित त्रिवेदी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला पेशकश हमने लिया है नेहा बसीन के स्वर में फिल्म मेरे ब्रदर्स की दुल्हन से। गीत इर्शाद कमल के है व संगीत सोहेल सेन का।

0: श्रोताओं, हमारा अगला गीत सुनिएगा इस संदेश के बाद।
1: पूछूं, अगर कल कोई आपके डिस्ट्रिक्ट घूमने आए तो आप उसे सबसे पहले कहाँ ले जाएं?
2: सोचिए, मैं किसी फेमस टूरिस्ट प्लेस की बात नहीं कर रही, मैं उस जगह की बात कर रही हूँ जो सिर्फ आपकी लिए खास है। शायद वो आपका फेवरेट सनसेट पॉइंट, या फिर वो स्वाद वाला एड्रेस या भुजबल वाली गली, या फिर कोई ऐसा मेला जिसके बारे में बाहर के लोग कम ही जानते हैं। बस यही तो आपकी कहानी है और इस कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का समय आ गया। अपने डिस्ट्रिक्ट की कहानी रिकॉर्ड कीजिए और दिखाइए कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक नया जेम छुपा है। तो इंतजार किस बात का? जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में पार्टिसिपेट कीजिए, 1 से 3 मिनट का वीडियो बनाइए और माई वेब पे अपलोड कीजिए और आप भी जीत सकते हैं 5 लाख, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के पास है कई कहानी।
0: श्रोताओं, इस वक्त आप चंद फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम नारी संगीत के अंतर्गत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत फिल्म आजा नचले से, गायिका सुनिधि चौहान के आवाज में। इस गीत के गीतकार हैं पीयूष मिश्रा तथा संगीतकार सुलाईमान।

श्रोताओ, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम नारी संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा इस संदेश के बाद।

0: किधर है?
1: बेटे का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी अपडेट।
2: ये तो झटपट काम है।
1: कैसे?
2: अगर केवाईसी डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
1: और बाकी चेंजेस?
2: घर बैठे वीडियो केवाईसी या आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से। ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
1: आरबीआई कहता है,
3: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
4: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हो चुके हैं। लीजिए, अब हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनिए, फिल्म हीरो पंती से, गायक मोहित चौहान के स्वर में। गीत कोसार मुनीर के है, वह संगीत विशाल का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनिए, गायक आर्को की स्वर में फिल्म कपूर और सन्स से। इस गीत के गीतकार हैं मनोज मुंतासिर तथा संगीतकार आर्को।

0: श्रोताओ, हमारा अगला गीत सुनिएगा इस संदेश के बाद।
1: हर जिले की अपनी एक पहचान है, हर परंपरा, हर अनसुनी कहानी, हर छिपी हुई मंजिल भारत का एक अनमोल रत्न है। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल जो देश के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स और हर जिले की अनूठी पहचान को राष्ट्रीय मंच देती है। शुरुआत दो राज्यों और चार

0: केंद्र शासित प्रदेशों से। अब आपकी कहानी भी पूरे देश तक पहुंच सकती है। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर वेव्स ओटीटी इंस्टॉल करें, खुद को रजिस्टर करें और माई वेव्स सेक्शन के प्रोग्राम्स में जाकर जेम्स ऑफ इंडिया चुनिए, अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करिए और अपनी एंट्री सबमिट कर दीजिए। चुनिंदा कहानियों को मिलेगा वेव्स ओटीटी और प्रसार भारती के राष्ट्रीय मंच पर स्थान, क्योंकि भारत की असली पहचान सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि उसके गांवों, कस्बों और जिलों की उन कहानियों में बसती है जिन्हें दुनिया तक पहुंचने का इंतजार है। अगर आपके पास अपने क्षेत्र की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, स्थानीय परंपराओं, प्रेरणादायक व्यक्तित्वों या अनसुनी कहानियों को दुनिया के सामने लाने का जुनून है तो यही है सही अवसर। आइए अपने जिले की पहचान को एक नई उड़ान दें, और सिर्फ पहचान ही नहीं आपके हुनर को मिलेगा सम्मान भी। जिला स्तर पर 50,000 रूपए, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर 2,00,000 रूपए और राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक के पुरस्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर क्रिएटर की अपनी कहानी, हर कहानी एक राष्ट्रीय मंच की हकदार।
1: श्रोताओ, इस वक्त आप चंद फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुनी यह अगला गीत, मनोज मुंतासिर द्वारा शब्द रचना पर फिल्म सनम रे से, अरिजीत सिंह और अमाल मालिक के आवाजों में, और इस गीत को संगीत से सजाया है अमाल मालिक ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला पेशकश हमने लिया है फिल्म हॉलीडे से, गायक अरिजीत सिंह के स्वर में। इर्शाद कमल के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है प्रीतम ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म रईस से अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर के आवाजों में। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे बोल पर इस गीत को संगीत दिया है कौशिक ने।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया फिल्म हीरो से यह गीत मोहित चौहान और प्रिया पंचल की आवाजों में। निरंजन आयगर के लिखे इस गीत को संगीत दिया था सचिन जिगर ने। श्रोताओं, कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए अगला गीत फिल्म एक पहली लीला से गायक उजैर जसवाल के स्वर में। कुमार द्वारा शब्द रचना पर इस गीत को संगीत से संवारा है उजैर जसवाल ने।

श्रोताओ, फिल्म एक पहली लीला की इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए उस्ताद अमजद अली खान से सरोद वादन। लीजिए श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम राग रंग।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अमजद अली खान से सरोद वादन। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेगा अब से ही थोड़ी देर बाद, यानी शाम के 4:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार शाम के 4:55 पर। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: यह आकाशवाणी है, अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज विश्व रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत से आधे से कम। अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चाउना मेन ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित विकसित भारत की यात्रा के वित्त पोषण विषय पर आयोजित सम्मेलन के उद्घाटन में हिस्सा लिया। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के दूसरे चरण में आंशिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी। और बीसवें एशियाई खेलों का आज जापान के आईची नागोया में औपचारिक उद्घाटन हुआ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों के 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों में युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिसमें देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस

0: तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा है कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में करीब आधे टियर टू और टियर थ्री शहरों में हैं। श्री मोदी ने कहा कि गांवों, कस्बों और छोटे शहरों के युवा देश की नई अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार सृजन और भर्ती के आकलन से पता चल रहा है कि सरकारी नियुक्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है। 20वां रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। नवनियुक्त युवा वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रक्षा सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज केरलम में एर्नाकुलम में दो दिवसीय पर आयोजित रोजगार मेले का उद्घाटन किया। ये मेला 20वें राष्ट्रव्यापी रोजगार मेले के अंतर्गत आयोजित किए गए। श्री चौधरी ने कहा है कि लोगों के सामूहिक प्रयासों से वर्ष 2047 से पहले ही विकसित भारत का सपना साकार किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत से आधे से कम है। आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
0: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पहले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
0: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का।
1: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा जीवित प्राणियों के प्रति करुणा रखने के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के महत्व का उल्लेख किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक है। श्री यादव ने वनों, घास मैदानों और आर्द्रभूमि के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया। अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चाउना मेन ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित विकसित भारत की यात्रा के वित्त पोषण विषय पर आयोजित सम्मेलन के उद्घाटन दिवस में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष आर्थिक पैकेज के रूप में अनुदान के जरिए अलग प्रावधान किए जाने की मांग की। उन्होंने इसके लिए राज्य के कठिन भौगोलिक क्षेत्रों, लंबे वर्षा ऋतु और कम कार्य अवधि के साथ साथ अधिक परिवहन लागत का हवाला दिया। उन्होंने कहा है कि इन कारणों से राज्य के दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में परिचालन लागत अधिक है, साथ ही राज्य को बाहरी सहायता प्राप्त निधियों का भी अभाव है। हालांकि उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने हमेशा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम यानी FRBM अधिनियम के तहत राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने और राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा के भीतर रखा है। उपमुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा है कि सरकार ने वेतन, पेंशन और अन्य प्रतिबद्ध देनदारियों से भुगतान की भी चूक नहीं की है। उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जो पूंजीगत व्यय और अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। राज्य सरकार बुनियादी ढांचे, संपर्क व्यवस्था, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में अपनी गतिविधियों से विस्तार के लिए निवेश कर रही है। असम के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और सांस्कृतिक हस्ती जुबिन गर्ग की आज पुण्यतिथि है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य में कई कार्यक्रम

0: आयोजित की जा रही है। 17 सितंबर से 3 दिन का जुबिन दिवस भी मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक सेवा को समर्पित 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और शासन की इसी सोच के साथ सरकार ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने और देश सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने कई पहल की है। इनमें से एक है अग्निपथ योजना। इस विशेष श्रृंखला में आज अग्निपथ योजना के अंतर्गत युवाओं को मिल रहे नए अवसरों के बारे में जानकारी दी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है। ये अधिकारियों से कहा गया है कि शरणार्थियों को निर्वासित करने से पहले यह आंकलन किया जाना चाहिए कि क्या अफगानिस्तान में ऐसे लोगों की उत्पीड़न, यातना या अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का खतरा है। विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के चिकित्सा और दंत चिकित्सा संस्थानों को अफगान छात्रों को वापस भेजने के निर्देश पर भी चिंता व्यक्त की है। रिपोर्ट के अनुसार 100 अफगान छात्र, जिसमें 20 से 40 महिलाएं भी शामिल, इससे प्रभावित है। जापान के आईजी नागोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में हुआ है। एशिया खेल में आज से 4 अक्टूबर तक ये खेल जारी रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया है कि ये नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की गई है। निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 5 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि 1-1 न्यायाधीश को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि वर्तमान में विश्व में सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यबल का 20% हिस्सा भारत में है। श्री कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने डिजाइन प्रतिभा पर विशेष जोर दिया है और लगभग 85,000 डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम जारी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashwani, the news read by Morgan Bagra. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 28th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future. He said the government endeavor has also been to ensure that the education and skills of the country's youth keep pace with the needs of the changing economy. Prime Minister Modi said the government is also working to rapidly expand employment opportunities in the private sector. Prime Minister Modi said that India has signed free trade agreements with nearly 40 countries in the past few years, which is opening new doors of opportunity for the country's youth. The 28th Rozgar Mela was held at 45 locations across the country. PM Narendra Modi has said that India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average. Inaugurating the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi today, Mr. Modi highlighted that India is the only country in the G20 that has successfully fulfilled the commitments made at the COP21 summit in Paris ahead of schedule. He said, India is rapidly working in areas like clean mobility and green hydrogen today. He highlighted that India's wind energy capacity has witnessed 3 times growth in the last 12 years. Mr. Modi emphasized that New India is also focusing on nuclear energy generation. The two-day conference is being organized by the National Green Tribunal. President Draupadi Murmu has appointed 14 judicial officers as judges and additional judges of Delhi, Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand and Karnataka High Courts. The Ministry of Law and Justice said that the appointments have been made after consultation with the Chief Justice of India. Besides, 5 judges were appointed as the additional judges of Delhi High Court, while 1 judge has been appointed for the Jammu and Kashmir and Ladakh High Court. The Ministry of Rural Development will begin training nearly 34,000 rural youth under Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushala Yojana 2.0 across most state and union territories from next month. Preparedness

kyeba zangbin samya charu in se yin da bonza kyab gun chembo zedin labchen yordi nok ne nga si she yin so mixe pando temtik ne kyeba jan de yimbur ta ije rangi sika de makan na ta ije kunlong chi ti ngai ye di lobjong di ya ya ta shanme she pando me de na nganang mise ga pandar wasu di rana samya si soinam sa yukta gyudi yimbur samya tambu charugo su kinzen chich ejena ejida tengi bichin darana na kalden sarsi oso di raibe nya yakse sarsi di umten di sung chi shu grace my madam si di sung de halim di kaya halim hojo la di rai ejya pota ich ti charugo su di rai chene da u ge them di ni samdo ana sambo re tangai uzuk toga de mixe kha chatu di hapshu mudu se di monum shin da u ha chatu pando them di ni ngai us nada dona di ya yakse chi dallo yor de ge yim na da che pa shan mo gam she ti shi su nan de so ti yor go ru ji ta sho ya me de di ni sam ya mo jam se ga sala reshma me ram bir ba shi ten de di shi ya ji na da shun ke ga ni la ye na bi yor de pe mo ya ya ga ri ti ya ga shi ji ga na ye i ji blong bli di go ma shu ga de mo de su gu ta to du chi char me de lo sem ne ga yor de te re ba ra shi da char me dang ge shi lak te ge shi lak ka lo chi te ga ti nya no ije plang sum li de su ga che yor yor de phantor ra ije de dang ra bi ri ya ya mi no mo dharam sala de ta de nga dang sa di se asia kya ka bi yor de bi kya bi yor de som ye de dharam sala plang yang ro di ne ije de sho ni sha ije de jer yuk de ra ije jang yor de ra ta kyep sang rang she phantor yor de ni shu shan mi she phantor ne na ma ne nga dang she phantor yor de ni o so re ije bo de mi mo halem di selfish ya ko de me o re wen yo ije ngai jang yu chi ma sho de selfish de ya jang o किताब से एताने में ये उत निशे उस हिंदी ने जिंगा दां बुईक ने इंजे सुमगा ने जत के देशियन ने फ्लो दूंगे अरे जो मिन्शो जत के सेहिंगे ने उत मिनाशे पंडो मंदो मगाशंग मिनाशे पंडो योरनी उत पंडो योरनी सी शेन जो गा दां दोना याको सुधी रंशे योर योर पंडो तो शो याको इच ता गिंजन जो बुझे इजी नोडे याको ले ता मना समझो का जिस समझ यो इन उत ता सी शे यून सो गा दां गेरगन ही शे मेंबर शो उत गा दां मंदो काम चाहोगे ने कोक मार जुगा दें बदी उत मन मु काम शुरू करने गई वहाँ सब उस सी शेन जो मतलब बच्चे के दोना दिया या कोक मार शुरू करते हैं बते उइ दाग तो जाओ है ना मतलब मन लूम बने कांगे कुछ गोंगा जिम दे काम सही दे मारने उइ मतलब लूम बने उसे का कांगे चीची मिक सिम की मतलब सामने तो हमें तो यू कांगे नहीं में कांगे जो मंगशो जो मतलब जो नहीं में या बोले ओ तो दोना दे या दे ना तो इतने था छोट छोटे यू दी निशो बता उस मिना बिल उस लोफी सो रोमशी सो एदांग लिउदी जिलिस उ चांगो रेंबुजे ग्यावा थामजे किंबा मादांग आशी दोबु छने मुनुम शिनदर इ दंबचे छिगे खागा सुगु छेरे खेबा मि हाचिर दो खेबा दांग रावजो रेशमे मेडमसी एदो नामे इ दबाजे याक बोले मुने दाने उ लबचिन रोमशी नामदा दिजे थाने मे याक बोले मादा लुंबु प्रिउथी गा पांगे बाजो सई गोय ना मादा उ दोना याक गोय ने ते उ मिथीसी सेक्शन थी गा छोकबो थीसी उगा गेरगन बाजे जांगया शनम बाजी जंगो सुमन इ गेरगन बाजी जंगो ने जे ओनु नंगे जंगो ने याजु इकि जिक्का ने फंदो मेरि गिम समन गन हसम लगाय ने फंदो मेरि गदाशे फंदो रिम जंगन बाजी शि फंदो रे गिम छिने लुंब जिलिंग आ फंदो मेरि गिम सेंग इन ओत सि लुंब जिलिंग आ फंदो मेरि गिम जे जो दोंग ओ जो ए दंगे लोजों नान नमे ओ सालखों सुम ने छपकों सुम ने सालखों सुम ने छपकों सुम मशेत बुरे इचे नाना छे रंग इंडिविजुअल लेवल का रंग घेर मिसे का युवा गया गे गोसुती इजे शुचे चिसो लेवल आ सोसाइटी लेवल आ युवा गया के गुज शुक्ता छे मलक ने या छे इजे सिस्टम लेवल आ युवा गया दे के गुज तुम बता उठले टाशो मन ने मादा मन लुम बचिता युवा दे थोंग गो ना इशु छे लोग बाइबल जोगन दे जोंसो ने सम नंगे लमरिम जोगन दे दा दा इ देंग ए छिता को यंग खादे ओशा तो मिशो ने उ जत गे दे क्लो दो ने माना छे यु यु फंदो नी इ थोसो गे या लेक्चर ला बी या छे देगा देगा उ दिनये छे कि मुनुम ने दे मे सिलान ने रुप लो यु मुनुम ने दे मे ते उत नेंगा खाले माल में कुन माया शतंग बु रूप लाए थप तुर ते सीला निगा रूप लो यु मुनु येशो सब सब माया ने ते इत्मा दे गेति ने छो रे चिने उत पास ओय लोब जों दी या या इच थोर थोर गई या चिक तमला शत के बु उत नेंग सुग खाले माल में शो या चिक ग्लू या शतंग बु चिक दे चिक इचे चिक रूप थप जुगे नि जो एता साइड बेकला गोय ते ने सुरा दे के लाजे से मादा ओला ने उत एतांग दत साइड जॉब थी उत की योंबा थी उत की चे ते माने समला दे देता यागुल दे उस तदुचे मिना बेर रिंजल हंगे नंगे या यागसे ओजो गोदी सुगा छ गादा छ गोगा नमदा नमदा नमदा दि थप जेहि न गादा मनलुम बुथि गो उमदिन दि गोजु न्य ब गो गो निमे रे यागबसे एजो हंगे बे पन बाछ के सेमशु नंगे नाय गादा सेमशु दि नाय उत गादा पि दि तन्या जु गेरगन

میڈیم ایف 197.2 میٹر ارتھات 1521 کلو ہرز پر آپ کی سیوا میں یہ آکاشوانی کا توانگ کیندر ہے. سمے سندھیا کے 6:10 ہوئے ہیں. شروتاؤ جروخا سے پہلے سنیے ایک ضروری سوچنا. اپایوکت توانگ ضلع دوارا جاری پرامرش انوسار توانگ ضلع کے مینگھر بوئپو چھیتر کے اوپری حصے میں بھاری بھوسکھلن ہوا ہے. استھل نرکشن کے دوران یہ پایا گیا ہے کہ بھوسکھلن کی گتیویدھی ابھی بھی جاری ہے تتھا ملبے کے کھسکنے اور آگے بھوسکھلن ہونے کی سمبھاونا بنی ہوئی ہے. اتا اودوم نامت گرینکھر شینتنگ تتھا آس پاس کے نچلے چھیتروں کے سبھی نواسیوں ایوم یاتریوں سے अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी गई है. सभी नागरिक कृपया ध्यान दें, प्रभावित क्षेत्र तथा नालियों और जलधाराओं के आसपास अनावश्यक आवाजाही न करें. नदी नाले और जल निकासी मार्गों के किनारे तथा निचले क्षेत्रों से दूर रहें, विशेषकर बारिश के दौरान और बारिश के बाद. भूस्खलन के मालवे को स्वयं साफ करने अथवा उसके आसपास जाने का प्रयास न करें. पानी का स्तर अचानक बढ़ने, मालवे के बहाव, जमीन में दरार या पहाड़ी से असामान्य आवाज आने पर तुरंत सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर चले जाए. किसी भी नए भूस्खलन, जल मार्ग में रुकावट या अन्य बदलाव की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दे. मिंजंग नाला के संवेदनशील क्षेत्रों में रेत उत्खनन गतिविधियों से बचे. सभी नागरिकों से अनुरोध है कि DDMA यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन करें जब तक कि क्षेत्र को सुरक्षित घोषित नहीं किया जाता. यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जरूरी सूचना है. कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं. सूचना समाप्त हुआ. लीजिए श्रोताओ, अब पेश है कार्यक्रम जरोखा. कार्यक्रम जरोखा में हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रम व कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से. तो आइए पहले हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रमों से. अब से ही थोड़ी देर बाद यानी संध्या के 6:20 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम शेदन लेरिम के अंतर्गत गेलोंग जम्बा वांगचू और साथियों से जोरवा चुटुक का शेष भाग, तत्पश्चात अनि सिटिम जंगमो और अनि यांगचिन लमो से ग्यावे शब्दन, खेन रुम्बुचेक शब्दन और न्युंगनेक मोनलम. शाम की 7:10 पर आप सुनेगा स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा.

इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए खंडो ड्रुवा जंगमो जिला अस्पताल तवांग के गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर छोटेन सिंह से प्रसव पूर्व देखभाल विषय पर भेंटवार्ता। शाम के 7:10 पर कार्यक्रम साज और आवाज, इसमें आज आप सुनिए फिल्म सिलसिला से किशोर कुमार और लता मंगेशकर और फिल्म मेरे जीवन साथी से किशोर कुमार के स्वर में चंद गीत। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम के 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज शाम के 7:50 पर। शाम के 7:55 पर आनंद लीजिएगा एक देशभक्ति गीत का। आज रात 8 बजे का वक्त रहेगा। आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पसंद किए गए चंद सदाबहार पुरानी हिंदी फिल्मी नगमे। 8:15 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित अरुणाचल न्यूज रेल। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैन 8:30 पर। 8:45 पर समाचार संध्या तथा रात्रि के ठीक 9 बजे सुनिए न्यूज एट 9। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से कल यानी 20 सितंबर 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। रोजाना की तरह कल हमारी सभा आरंभ होंगे दोपहर के 2 बजे मिट्टी न्यूज के साथ तथा 2:15 पर दोपहर समाचार। दोपहर के 2:30 पर भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना, इसके अंतर्गत कल आप सुन पाएंगे लामा करसंग और साथियों से बोध भक्ति गीत। 3 बजे विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कल दोपहर के 3:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम मेरी बात। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कल आप सुनिए दोर्जी खंडू गवर्नमेंट कॉलेज तवंग के 5th सेमेस्टर की छात्र मिस मीना रत्ना से महिला सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है विषय पर चंद शब्द। कल दोपहर के 3:33 का वक्त रहेगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत, इसमें कल आप सुन पाएंगे फिल्म गुड बाय से अमित त्रिवेदी, फिल्म रॉय से मीट ब्रोस अंजान और कनिका कपूर, फिल्म ओम शांति ओम से के, फिल्म लेडीज वर्सेस विक्की से शिल्पा राव, फिल्म वीर जरा से लता मंगेशकर, फिल्म टाइगर जिंदा है से ज्योति नूराम और फिल्म लगा चुनरी में दाग से सुनिधि चौहान के आवाजों में चंद नगमे। कल शाम के 4 बजे आप सुनेगा कार्यक्रम युवा वाणी।

कल शाम के 7 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार तथा शाम के 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार, शाम के 7:10 पर आप सुनिए कवाली गीतों का कार्यक्रम महफिले कवाली। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कल आप सुनिए उस्ताद नुसरत फतेह अली खान से चंद कवालियां। शाम के 7:25 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम समुदाय गीत एवं गीत पाठ। कल शाम के 7:55 पर आनंद नीचे का एक देशभक्ति गीत का। कल रात के ठीक 8 बजे आप सुनिएगा आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पसंद किए गए चंद सदाबहार पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। 8:30 पर स्पोर्ट्स कैन, 8:45 पर समाचार संध्या तथा रात्रि के ठीक 9 बजे सुनिए न्यूज एट 9। 9:16 पर कल के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इसी जानकारी के साथ ही कार्यक्रम जरूर

अब यही पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेगा मनपा में। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

지지동화 네바데모니니니 차신차와 남겨보와 계속하다 르버르지바 따두어바다 르버르지바

Tambe so jin do bara jin ye.

담지군디 라마라베라에 도안들지 장라소원디 기대군디 라마라베라에 도안들지 장라소원디 간주

Om Mani Mani Mahamani Zo.

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हुए हैं।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: इससे पहले नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: रेलवे ने सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशन पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेशी स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने की मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई और पश्चिम रेलवे के उधना इकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए भी 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फोरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ आपदा में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। पिछले महीने नेपाल में भीषण बाढ़ में जान माल का भारी नुकसान हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक न्यायाधिकारियों की न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किया है। ये नियुक्तियां मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की गई हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 पद जीत लिए हैं। परिषद के यश डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्यराज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद जीत लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने छात्र संघ चुनावों में परिषद की जीत पर बधाई दी है। एशियाई खेलों का उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नगोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने

0: member contingent was led by double Olympic medalist Manu Bhakar and Kabaddi player Pawan Sehrawat during the athletes' parade. Prime Minister Narendra Modi has extended his best wishes to the Indian contingent. In his message, Mr. Modi said, "Each athlete has worked incredibly hard and shown remarkable dedication and determination, and India is proud of them." He hoped that the athletes play well and shine at the Games. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार। मीडियम एफ 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर और साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:10 हुए हैं। निजी श्रोताओं, अब सुनिए स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनिए खंडो ड्रवा जांगमो जिला अस्पताल तवांग के गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर छोटेन सिंह से प्रसावपुर देखभाल विशेष

0: आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:10 हुए हैं। निजी श्रोताओं, अब सुनिए स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनिए खंडो ड्रवा जांगमो जिला अस्पताल तवांग के गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर छोटेन सिंह से प्रसव पूर्व देखभाल विषय पर भेंटवार्ता। भेंट करता है मिस दोर्जी ड्रमा।
1: आकाशवाणी तवांग से प्रसारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा सुन रहे आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हमने आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में आमंत्रित किया है खंडो ड्रवा जांगमो जिला अस्पताल तवांग के गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर छोटेन सिंह जी को। डॉक्टर छोटेन सिंह जी, आपका सबसे पहले आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ।
2: थैंक यू, धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, डॉक्टर छोटेन सिंह गायनेकोलॉजिस्ट है, तो आज हम इनसे गायनी यानी स्त्री रोग से संबंधित कई सारी चर्चा करेंगे। और सबसे पहले चर्चा करते हैं एंटीनेटल केयर पर। एंटीनेटल केयर या फिर प्रसव पूर्व जांच, जो हर गर्भवती महिला को अपनी गर्भावस्था के दौरान प्रसव पूर्व जांच करवानी होती है, तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहिबा से जानते हैं कि एंटीनेटल केयर क्या है, इसकी क्या महत्व है, क्यों जरूरी होती है।
2: तो एंटीनेटल केयर का बेनिफिट ये है कि हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और लो रिस्क प्रेगनेंसी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो तो हम उन्हें अर्ली ट्रीट करके उसकी कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड कर सकते हैं, और प्रेग्नेंट महिला को एजुकेट कर सकते हैं कि क्या उनके शरीर में क्या क्या क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और एक कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब बट स्पेसिंग के बारे में भी बता सकते हैं ड्यूरिंग एंटीनेटल केयर।
1: जी जी, ये जो है गर्भावस्था के दौरान कि हमें किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए और ये क्यों जरूरी है, इस बारे में आप कई सारे शिक्षा देते हैं, और साथ साथ उनको बच्चे के जन्म से पहले कोई खतरा है या नहीं, ये तो आप जांचते ही है ना। और अब हमें ये बताइए कि गर्भावस्था के दौरान कितने बार एंटीनेटल चेकअप या एंटीनेटल केयर के लिए आपके पास आनी चाहिए किसी गर्भवती महिला को।
2: जो हम एंटीनेटल विजिट बोलते हैं वो WHO के अकॉर्डिंग मिनिमम 8 विजिट जरूरी है।
1: जी जी,
2: जैसे ही एक महिला प्रेग्नेंट होती है 12 हफ्ते के अंदर उसे फर्स्ट विजिट एक डॉक्टर के पास जाना होते हैं। मिनिमम एंटीनेटल विजिट 8 बार होते हैं, बट अब आपको कब कब आना होता है, फर्स्ट विजिट होता है 12 हफ्ते के अंदर, जिसमें हम मिनिमम टेस्ट जैसे कि ब्लड ग्रुपिंग, RH टाइपिंग, HIV, VDRL और बाकी शुगर टेस्ट करते हैं। अब प्रेगनेंसी में जो शुगर टेस्ट करते हैं वो अलग होता है नॉर्मल महिला से, उसे हम बोलते हैं डिप्सिड, डायबिटीज इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप बोलते हैं, और उनका कट ऑफ होता है 140 मिलीग्राम। अगर 140 मिलीग्राम से ऊपर होता है तो उसे हम जेस्टेशन और डायबिटीज बोलते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज होना, और BP मॉनिटर करते हैं, और दूसरे हम अल्ट्रासाउंड करते हैं वायबिलिटी देखने के लिए या कोई प्रेगनेंसी लोकेट करने के लिए। जो सेकेंड विजिट होता है वो मंथली विजिट, 7 मंथ्स तक मंथली विजिट होता है, मतलब 28 वीक्स तक उसे मंथली डॉक्टर के पास आना होता है। 28 वीक्स के बाद ट्वाइस वीकली आना होता है 36 वीक्स तक, और 36 वीक्स के बाद उसे वीकली आना होता है ताकि हम बता सके कि मोड ऑफ डिलीवरी किस तरह से वो डिलीवर कर सकते हैं, क्या एक्सरसाइज करनी है उसे ताकि वो नॉर्मल डिलीवर कर सके।
1: और हमारे शरीर में किन विटामिन्स की कमी है ये भी आप जरूर देखते होंगे, है ना।
2: हाँ जी।
1: और मैं आपसे ये जानूंगी कि आपने बताया कि एंटीनेटल केयर या प्रसव पूर्व जांच के दौरान केवल जांच करते हैं कि उनमें क्या विटामिन्स की कमी है या फिर कोई और खतरे उनमें है या नहीं। कई बार सुनते हैं अल्ट्रासाउंड हम करके आए हैं या हमें अल्ट्रासाउंड करना है, तो ये अल्ट्रासाउंड क्या है और कब कब करती है, क्यों जरूरी है इसकी।
2: एंटीनेटल केयर के दौरान सबसे पहले जो अल्ट्रासाउंड होता है जो 12 हफ्ते के अंदर होता है, उसमें हम यह पता कर सकते हैं कि बच्चा बच्चेदानी के अंदर है क्या नहीं है। कभी कभार कोई महिला प्रेजेंट करते हैं जो बच्चा पनपता है वो कहीं और, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं उसे,
1: जी जी,
2: उसे देखने के लिए। और जैसे कि आजकल बहुत सारे बच्चे में प्रॉब्लम होते हैं जैसे कि सिंड्रोम्स रहते हैं, डाउन सिंड्रोम, एडवर्स सिंड्रोम, तो ये भी हम एंटीनेटल चेकअप के दौरान ही पेशेंट को बता सकते हैं कि आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है।
1: जी, हम सुनते हैं कई बच्चे में कि जन्म के बाद उन्हें पता चला कि उनमें कई सारे डिफेक्ट्स है या फिर उनके विकास में देरी थी या फिर आने वाले समय में हो सकते हैं, ये सारे जो समस्या है अगर आप प्रसव पूर्व जांच नहीं करवाते हैं तभी आते हैं, है ना।
2: जी, तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं, जैसे कि अगर हमें पता है कि ये महिला हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि
1: जी इस बीच आपको थोड़ी सी टोकना चाहूंगी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है।
2: अगर कोई महिला 35 एज के बाद प्रेग्नेंट होते हैं तो वो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं।

0: और उनका एक रिस्क फैक्टर रहता है कि उनके बच्चे में कहीं ना कहीं कुछ सिंड्रोम वो कैरी कर सकते हैं बच्चे में कोई प्रॉब्लम जैसे कि डाउन सिंड्रोम। तो इस डाउन सिंड्रोम को हम एक स्कैन के द्वारा पकड़ सकते हैं, जैसे वो स्कैन 11 से 14 हफ्ते के अंदर होता है जिसमें हम बच्चे के गले के पीछे एक पानी रहता है न्यूकल ट्रांसलूसेंसी बोलता है उसे मेजर करते हैं और बच्चे के नाक के हड्डी को मेजर करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम है कि नहीं। अगर डाउन सिंड्रोम हो तो बच्चे के नाक की हड्डी एब्सेंट रहता है और ये गले के पीछे जो पानी रहता है वो कुछ बढ़ के होता है उसको। और अगर सेंसिटिविटी लाना चाहते हैं तो एक ड्यूअल मार्कर टेस्ट रहता है जो कि सीरम मार्कर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दूसरा स्कैन हम 18 से 20 हफ्ते में करते हैं जिसमें हम बच्चे के सारे अंग डेवलप हुआ है कि नहीं देखते, जैसे कि हार्ट अच्छे से डेवलप हुआ है क्या नहीं, कोई ऑर्गेन में कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं है वो देखते हैं 18 से 20 वीक्स में। उसे हम बोलते हैं टीफा स्कैन, टारगेट इमेजिंग ऑफ फिटल एनोमलीज।
1: जी जी, ये तो रही हर गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच के दौरान दिए जाने वाली सुविधाएं। और सही आहार का बहुत ही भरा भूमिका होती है, तो किस तरह के आहार गर्भावस्था के दौरान एक गर्भवती महिला को लेनी चाहिए?
0: अगर डाइट की बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान प्रोटीन इंटेक हाई होना चाहिए जो कि हम बोलते हैं 18-20 ग्राम प्रोटीन पर डे रहना चाहिए, प्लस कार्बोहाइड्रेट का मात्रा थोड़ा कम होना चाहिए। और जो मेडिसिन हम लेते हैं जैसे कि जैसे ही हम कंसीव होते हैं अगर वो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं तो फोलिक एसिड नाम के एक मेडिसिन रहते हैं वो 5 मिलीग्राम पर डे देते हैं अगर वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर आते। अब हाई रिस्क प्रेगनेंसी में क्या क्या आते हैं, जैसे कोई महिला पहले से ही डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, या उनके पहले बच्चे में कोई दिक्कत हो जैसे कि रीढ़ की हड्डी कुछ अच्छी तरह बना नहीं हो, कोई महिला ऑलरेडी एक मिर्गी बीमार से जूझ रही है, तो उन्हें हम फोलिक एसिड 5 मिलीग्राम पर डे देते हैं 12 हफ्ते तक उन्हें 5 मिलीग्राम पर डे देते हैं। और अगर लो रिस्क प्रेगनेंसी है कोई उनको दिक्कत नहीं है तो 400 माइक्रोग्राम पर डे देते हैं।
1: जी, और कहते हैं कि पर्याप्त नींद प्रेग्नेंट महिलाओं को लेनी चाहिए, तो ये कहाँ तक सही है?
0: एक प्रेग्नेंट महिला को 7 से 8 घंटे की नींद लेना चाहिए क्योंकि अगर स्ट्रेस रहते हैं तो बेबी में कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस है।
1: तो आने वाले बच्चे में कोई भी समस्या ना आए इसीलिए पर्याप्त नींद भी लेनी बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आपने कहा कि एक गर्भवती महिला को माँ और बच्चे दोनों की सुरक्षा के लिए 8वीं बार तक कम से कम प्रसव पूर्व जांच करानी चाहिए, तो उसके बावजूद भी मैंने कई बार सुना कि बच्चे के जन्म जो है डॉक्टर द्वारा दिए गए तारीख से कई बार आगे पीछे हो जाते हैं, तो इसके क्या कारण रहते होंगे? और जब कोई महिला 8वीं बार आपके पास आते हैं तो उनमें से किन महिलाओं को आप सीधे अस्पताल में भर्ती कराते हैं?
0: जैसे कि अभी मैंने कहा कि एंटीनेटल विजिट्स मिनिमम 8 विजिट्स होने चाहिए, बट अब कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जैसे कि पेशेंट बता रही है कि उनकी पहले 2 बच्चे खराब हो गए, ये पेशेंट हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, तो मे बी कि उनके बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं या बच्चेदानी के मुंह जो हम सर्विक्स बोलते हैं वो थोड़ा छोटा हो तो वो समय से पहले बच्चे डिलीवरी हो जाते हैं। दूसरा ये है कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी 40 हफ्ते तक रहता है, बट जो हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी देते हैं उसमें सिर्फ 4% लोग डिलीवरी करते हैं, उसकी जस्ट 1 हफ्ते पहले डिलीवर हो सकते हैं या 1 हफ्ते बाद डिलीवर हो सकते हैं।
1: जी, और डॉक्टर साहिबा, हम हमारे यहाँ तवांग के बारे में चर्चा करें तो यहाँ के जो गर्भवती महिलाएं होते हैं आपके पास कितने समय के बाद आते हैं? क्या वे पहला तिमाही में ही आपके पास आ जाते हैं या फिर काफी देर होने के बाद जब उनमें कोई समस्या आने लगते हैं तभी आते हैं? यहाँ की स्थिति क्या है अभी तक की?
0: यहाँ पे मैंने देखा है कि जैसे कोई दूर दराज के पेशेंट्स आते हैं तो वो अल्ट्रासाउंड के लिए ही आते हैं और वो 5वें या 6ठे महीने में आते हैं, हालांकि उन्हें फर्स्ट विजिट में जैसे कि 12 हफ्ते के अंदर आना चाहिए, पर वो 5 या 6 महीने में आते हैं या डिलीवरी के दौरान पहुंच जाते हैं।
1: जी, तो तब तक किसी में अगर कोई समस्या आनी होती है तो आ ही गया हो सकता है ना?
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: तो उस समय थोड़ी सी समस्या माँ और बच्चे दोनों में हो सकती है, तो हो सके तो जब आप कंसीव करते हैं पहला तिमाही में ही आना सही है, है ना?
0: इससे हम ये भी पता कर सकते हैं जैसे गर्भनाल कहाँ पे है, अगर गर्भनाल नीचे की ओर हो तो ऐसे भी हो सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी हो, प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें ब्लीडिंग होने की चांसेस है और गर्भपात होने के चांसेस भी होते हैं।
1: ये तो रही गर्भावस्था के दौरान प्रसव पूर्व जांच के बारे में। अब चलते हैं बच्चे के जन्म की ओर, और यहाँ पर आते हैं 2 तरह के डिलीवरी, पहला है नॉर्मल डिलीवरी और दूसरे सी सेक्शन डिलीवरी। तो इन दोनों में माँ और बच्चे दोनों में फर्क क्या देखने को मिलते हैं? जैसे कुदरती तरीके से बच्चे

0: कि जन्म करने में क्या फायदे हैं और सी सेक्शन करने में कोई नुकसान है या नहीं।
1: नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन में ये डिफरेंस है कि नॉर्मल डिलीवरी एक नेचुरल मेथड है। नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है कि लाइक बच्चा नेचुरल वे से डिलीवर होता है, तो बच्चे में इम्यूनिटी ज्यादा होते हैं, इम्यूनिटी मतलब बीमार होना कम होता है, प्लस उनका फ्यूचर में जाकर कोई उन्हें लंग्स प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि ड्यूरिंग डिलीवरी उनके लंग्स से ल्यूट क्लियर खुद ब खुद हो जाता है।
0: अच्छा।
1: पर कोई कोई इंडिकेशंस रहता है कि इस पेशेंट में सिजेरियन करना हो, जैसे कि अगर आपका गर्भनाल नीचे की ओर हो तो उन्हें इलेक्टिव सिजेरियन करना होता है।
0: जी जी।
1: और अगर बच्चा सही से घुमा ना हो, जो हम रीच डिलीवरी बोलते हैं, तो उनमें सिजेरियन करना होता है, या पेल्विक बोन होता है वो थोड़ा सा छोटा हो
0: जी जी,
1: तो उनमें भी इलेक्टिव सिजेरियन करना होता है। और अगर हम बात करें इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन, तो इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन हम कंडीशन जैसे कि अगर बच्चा फंस गया हो, नीचे से नहीं निकल रहा हो, तो उसमें इमरजेंसी सेक्शन करते हैं, या बच्चे ने अंदर ही पोटी कर दिए है, जो कि हम म्यूकोनियम बोलते हैं मेडिकल टर्म में, म्यूकोनियम पास कर दिए, उनमें सिजेरियन सेक्शन करते हैं, या बच्चे के हार्ट काफी नीचे, नॉर्मल बच्चे के हार्ट बीट अगर नॉर्मल माना जाता है वो है 110 से 160 माना जाता है, अगर 110 के नीचे जाए तो एक कॉम्प्लिकेशन होता है, तो हमें तुरंत ही बच्चे को ऑपरेशन के दौरान निकालना पड़ता है।
0: जी जी। तो ये तो रही अस्पताल में होने वाली नॉर्मल डिलीवरी या फिर सी सेक्शन, है ना। आपके पास एंटीनेटल केयर के लिए तो जरूर आते हैं, पर उनके जब डिलीवरी के टाइम आते हैं, डिलीवरी के समय जब नजदीक आते हैं, तो वो अस्पताल नहीं आते हैं, घर पे ही पैदा करते हैं आप, तो उनको आप क्या सलाह देंगे और कहाँ तक ये सही हो सकता है?
1: प्रेग्नेंट महिलाओं को कहना चाहूंगी कि वो लास्ट के मंथ हो तो उन्हें वीकली विजिट करना चाहिए हॉस्पिटल, ताकि हम बता सके कि वो नॉर्मल कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। और अगर आप घर में रहकर डिलीवरी करते हो, और ऐसे भी मैंने देखा है यहाँ पे कि जो प्रेग्नेंट महिलाओं को छंग पिला के लेके आते हैं यहाँ पे, तो वो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इसमें हम ना पेशेंट को कुछ दवाई दे सकते हैं, बिकॉज दवाई से रिएक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और डिलीवरी के दौरान ये भी होता है कि जैसे बच्चा डिलीवरी होता है तो बच्चेदानी जो गर्भाशय बोलते हैं वो उसमें से ब्लीडिंग काफी होता है, तो उसे हमें रोकने के लिए बहुत तकलीफ होता है।
0: जी। लोग जो है सी सेक्शन या सीजरन को सुनकर शायद डर जाते होंगे, आपने उनके अंदर समस्याएं देखे होंगे और आपने कह दिए होंगे कि आपकी सी सेक्शन के जरिए ही बच्चे की जन्म होंगी, तो वो डर के मारे अस्पताल आते नहीं है, घर पे कुदरती तरीके से जो जन्म देने की कोशिश करते हैं, तो उनको क्या सलाह देंगे? सी सेक्शन कितने नॉर्मल है आप किस तरह से बताएंगे?
1: सीजरन सेक्शन कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, बल्कि अगर आप नॉर्मल के चक्कर पे घर पे रहोगे, अगर बेबी अंदर की और फंस जाते हैं तो उसमें और दिक्कत है, वो दोनों माँ और बच्चे की जान को खतरा रहता है उस समय, तो इसलिए हम सिजेरियन के लिए काउंसिल करते हैं।
0: जी जी। जैसे कि अस्पताल में कोई गर्भवती महिला अपने बच्चे की जन्म देने के लिए आए और उनके कुदरती तरीके से जन्म हुए, तो किसी के सी सेक्शन हुए, तो उनको अस्पताल में कितने दिन तक आप रहने की सलाह देते हैं?
1: अगर कोई महिला नॉर्मल डिलीवरी होता है तो उसे एटलीस्ट 24 घंटे तक रहना होता है, क्योंकि हमें ऑब्जर्व करना होता है कि उनको कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और अगर कोई सिजेरियन हुआ तो उसे एटलीस्ट 3 से 4 दिन एडमिट करके रखते हैं, क्योंकि सिजेरियन में उन्हें दिक्कत होता है, थोड़ा चलने में दिक्कत होता है, थोड़ा डाइट लेने में दिक्कत होता है, तो उस एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि किस तरह से उसे धीरे धीरे अपना डाइट स्टार्ट करना है।
0: बच्चे के जन्म के बाद कई महिलाएं ऐसी भी होती हैं कि वो तुरंत काम करने शुरू कर देते हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे और उन्हें फिर डिलीवरी के बाद कब कब अस्पताल में आनी चाहिए और अपने ध्यान जो है किस तरह से रखें?
1: डिलीवरी के बाद उसे एटलीस्ट 6 हफ्ते तक रेस्ट की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चेदानी को नॉर्मल साइज आने को एटलीस्ट 6 हफ्ते लगते हैं, और अगर आप उससे पहले कुछ काम करते हो तो चांसेस है कि आपके बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो या बच्चेदानी थोड़ा नीचे आ जाए, और फ्यूचर में आपको दिक्कत होने की चांसेस होती है।
0: एक महिला की पहला बच्चा हुआ तो फिर दूसरे बच्चे के लिए वो कब योजना बना सकती है?
1: अगर किसी महिला को नॉर्मल डिलीवरी हुआ तो वो एटलीस्ट 2 या 3 साल गैप दे सकते हैं दो बच्चे के अंतर, अगर किसी के सिजेरियन हुआ है तो उसे एटलीस्ट 3 साल गैप रहना होता है, क्योंकि बच्चेदानी को हील होने के लिए एटलीस्ट 6 महीना चाहिए होता है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी वो अच्छी तरह से कंसीव कर सके।
0: किसी महिला की पहला बच्चा जो है सी सेक्शन हुआ है तो दूसरी बार भी उनके अगर सी सेक्शन ही होने की संभावना हो तब क्या करनी चाहिए?
1: सबसे पहले मैं यह पता करना होता है कि फर्स्ट जो उनका सिजेरियन हुआ वो किस कारण से हुआ, जैसे कि बच्चे के हार्ट बीट ऊपर नीचे हुआ, या इमरजेंसी सिजेरियन, पानी एमनियोटिक

0: जो लीकेज हो गया उनके वजह से हुआ, तो हम नेक्स्ट प्रेगनेंसी में उसे नॉर्मल ट्राई करा सकते हैं। बट हालांकि उसमें यह होना है कि 24 घंटे तक हमारे ब्लड बैंक ओपन होना होता है, प्लस एनेस्थेलॉजिस्ट रहना होता है, तभी हम नॉर्मल ट्राई कर सकते हैं, जो कि हम इंग्लिश में उसको बोलते हैं टोलैक, ट्रायल ऑफ नॉर्मल लेबर।
1: जी, और कहते हैं किसी महिला के अगर तीसरी बार सी सेक्शन होते हैं तो वो अब दोबारा बच्चे की जन्म नहीं दे पाएंगे, तो ये कहां तक सही है? और हालांकि सरकार कहते हैं कि दो ही बच्चा करनी चाहिए, मगर अपने अपने एक चाहत होते हैं कि हमारा और बच्चे हो जाएं, तो उनको आप क्या सलाह देंगे, इस बारे में क्या बताएंगे आप?
0: अगर आपके दो सिजेरियन हुए हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि आप दूसरे बार कंसीव नहीं कर सकते, आप चौथे बार भी कंसीव कर सकते हैं, बट उसमें दो प्रेगनेंसी के बीच में गैप होना होता है, जो हम बर्थ स्पेसिंग बोलते हैं। चौथी बार भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, बट आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हो।
1: जी जी जी, जैसे कि हम कई बार सुनते हैं मिसकैरेज, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, मगर जो महिला दिखने में तो काफी सारे हड्डे कट्टे होते हैं, हेल्थी होते हैं, हुआ होता है कई बार, तो इसके कारण क्या होते होंगे?
0: मिसकैरेज के कॉजेस बहुत सारा होता है, जैसे कि माँ को अंडरलाइन कोई डिजीज हो, या थायराइड की प्रॉब्लम हो, या मदर खुद डायबिटिक हो,
1: अच्छा,
0: या कोई हाइपरटेंसिव हो, तो खुद ब खुद बच्चा अच्छे से नहीं पनपता है, तो वो मिसकैरेज हो जाता है।
1: जी, जी।
0: दूसरा, अगर माना जाए तो हम जैसे 39-40 के एज में कंसीव होना, तो भी मिसकैरेज का चांस ज्यादा होता है। हस्बैंड में कोई दिक्कत हो, जैसे हस्बैंड के शुक्राणु में कोई दिक्कत हो, तो भी मिसकैरेज होने के चांसेस ज्यादा होता है।
1: जी, तो मिसकैरेज होने के कई सारे कारण होते हैं, है ना? जब हम डिलीवरी की तरफ थोड़ी सी और पीछे चले, तो मैं ये आपसे सवाल करूं कि बच्चे जब जन्म होते हैं तो उनके सही वजन कितनी होनी चाहिए, या फिर कई बच्चे बहुत सारे ज्यादा वजन के भी होते हैं तो कई कम वजन के भी होते हैं, तो अगर किसी के कम या ज्यादा होने से फिर क्या समस्या हो सकते हैं?
0: बच्चे के नॉर्मल वजन होते हैं, जैसे कि अगर आप 2.5 केजी के ऊपर हो तो वो नॉर्मल वेट माना जाता है बच्चे का, अगर 2.5 के नीचे हो तो लो बर्थ वेट बोलते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता है, हाइपोथर्मिया होता है, या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के चांसेस ज्यादा होता है।
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: अगर बच्चा लो बर्थ वेट है तो उसे हम पहले ही पीडियाट्रिशियन को बता के रखता है कि बच्चा लो बर्थ वेट है, तो पीडियाट्रिशियन टाइमली आके उन्हें देख के अगर उसे एडमिट करना हो तो वो एडमिट करते हैं। अगर बच्चे का वेट 4 केजी से ज्यादा हो तो हम उसे मेडिकल टर्म में मैक्रोसोमिया बोलते हैं, या बिग बेबी बोलते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है कि माँ को बच्चे डिलीवरी करने में दिक्कत होने के चांसेस हैं, और दूसरा बच्चे को फ्यूचर में डायबिटिक होने के चांसेस हैं।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहिबा, आज के इस कार्यक्रम में आपने कई सारे जानकारियां हमारे श्रोताओं को दी, तो अंत में मैं चाहूंगी कि इस समय जो हमें सुन रहे हैं हमारे गर्भवती महिलाओं को, आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: हर प्रेग्नेंट लेडी को एक नियर बाय पीएचसी डॉक्टर से आप जाके जांच करवाए, या गायनोकोलॉजिस्ट से आके मिले, ताकि हमें पता चले कि क्या हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, क्या लो रिस्क प्रेगनेंसी है, और हमें उसे किस तरह से मैनेज करना है, और फ्यूचर में ना कुछ उन्हें दिक्कत हो।
1: तो डॉक्टर छटिन सिंह, आज आपने अपने समय निकालकर हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में आए, और हमें सुन रहे हमारे कई सारे श्रोतागण ऐसे होंगे जो विवाहित हैं और जो इस समय गर्भवती हो सकते हैं, तो उनके लिए आपने कई सारे जानकारियां दी, प्रसव पूर्व जांच की क्या महत्व है, डिलीवरी के समय क्या क्या करनी चाहिए, तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खंडू डोवाजाउमो जिला अस्पताल तवांग के गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर छोटेन सिरिंग से प्रसव पूर्व देखभाल विषय पर भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थे मिस दोर्जी ट्रमा। इसी के साथ ही कार्यक्रम स्वास्थ्य से संबंधित स्वास्थ्य चर्चा अब यहीं पर समाप्त होता है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम सुनेगा इस संदेश के बाद।
3: आपके सिटी या डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसी स्टोरी है जो इंटरनेट को पता होनी चाहिए, तो कैमरा उठाओ, बिकॉज दिस इज योर मोमेंट। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज शुरू हो रहा है 2 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज में। बस 1-3 मिनट का वीडियो बनाओ और शोकेस करो अपने डिस्ट्रिक्ट की कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म, ट्रेडिशंस, लोकल स्टोरीज या यूनिक आइडेंटिटी। पार्टिसिपेट करना है? वेव्स OTT ऐप पर रजिस्टर करो, जो अवेलेबल है Google Play Store और Apple App Store पर।

0: लीव्स पर क्लिक करो, प्रोग्राम सेक्शन में जाओ और अपना वीडियो सबमिट करो। और हाँ, प्राइज मनी भी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50,000 रुपीस, स्टेट लेवल पर 2,00,000 रुपीस और नेशनल लेवल पर 5,00,000 रुपीस। सबमिशंस ओपन है 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक। तो अपनी स्टोरी और क्रिएशन को दो स्पॉटलाइट।
1: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:30 हुए हैं। लीजिए श्रोता, अब आप सुनिए दोनों व गीतों का कार्यक्रम साज और आवाज। लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला धुन आइए सुनिए फिल्म सिलसिला से।

निजी श्रोताओं, इसी धुन पर आइए सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वरों में गीत। गीत जावेद अख्तर के है व संगीत HP 84 का।

आइए श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम दिन का इसी गीत को सुनिए। किशोर कुमार की आवाज में इस गीत के गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी तथा संगीतकार आरडी बर्मन।

श्रोताओ, इस गीत के साथ ही दोनों गीतों का कार्यक्रम साज और आवाज अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओ, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेगा अब से ही थोड़ी देर बाद यानी शाम के 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा 7:50 पर रीजनल न्यूज। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए।

प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोल रही है। उन्होंने कहा है कि ऐसे व्यापार समझौतों से देश के उद्यमियों के लिए नई साझेदारियों और बाजारों का मार्ग प्रशस्त हुआ है तथा युवाओं के लिए करियर की नई संभावनाएं उत्पन्न हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत से आधे से भी कम है। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से जुड़े हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत का प्रमुख ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा पर रहा है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा है कि भारत आज स्वच्छ परिवहन और हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम कर रहा है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने विकसित भारत की यात्रा के वित्त पोषण विषय पर आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन के दूसरे दिन अरुणाचल प्रदेश की विशाल जलविद्युत क्षमता और भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में राज्य के रणनीतिक महत्व को रेखांकित किया। आज फाइनेंसिंग द एनर्जी ट्रांजिशन विषय पर सत्र में भाग लेते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में जल विद्युत महत्वपूर्ण है। यह स्थिर और भरोसेमंद नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध कराती है तथा सौर और पवन ऊर्जा के सहयोगी होते हैं। उप मुख्यमंत्री ने दोहराया कि जिम्मेदार विकास, मजबूत बुनियादी ढांचे और अधिक निवेश भागीदारी के साथ अरुणाचल प्रदेश भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभर सकता है। उन्होंने कहा है कि इससे रोजगार, उद्यमिता और समावेशी आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर भी पैदा होंगे। अरुणाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड APPSSB द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा 2026 में लगभग 139 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है। इनमें पर्सनल असिस्टेंट यानी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के 36 पद, लाइब्रेरियन के 2 पद और UDC के 101 पद शामिल है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में सभी चयनित उम्मीदवारों को बधाई देते हुए सार्वजनिक सेवा के इस नए अध्याय की शुरुआत पर उम्मीदवारों के सफल करियर की शुभकामनाएं दी। शिक्षा मंत्री पासांग दोर्जी सोना ने नागालैंड के चुमो केदिमा स्थित नागा यूनाइटेड विलेज के JP पार्क एवं बैंकेट्स में आयोजित 2 दिवसीय एजुकेशन कॉन्क्लेव 2026 में हिस्सा लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सम्मेलन ने पूर्वोत्तर के विभिन्न हिस्सों से शिक्षा जगत के नेताओं और हितधारकों को एक मंच प्रदान किया तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन तथा क्षेत्र विशेष की चुनौतियों पर अवसरों पर विचार किया जा सके, जिसका उद्देश्य शिक्षा सुधार के लिए अधिक समन्वित रोडमैप तैयार करने की दिशा में काम करना है। श्री सोना ने कहा है कि ये सम्मेलन इस बात की उपयुक्त याद दिलाती है कि पूर्वोत्तर में शिक्षा का जुड़ाव क्षेत्र अपनी पहचान, भाषाओं, विरासत और समुदाय से घनिष्ठ रूप से बना रहना चाहिए। डिजिटल आर्काइविंग, लिंग्विस्टिक टूल एंड AI एप्लीकेशन इन लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल रिसर्च विषय पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आज लोअर दिबांग वैली जिले के खिंजली स्थित रिवॉच कॉन्फ्रेंस हॉल में समाप्त हुआ। 2 दिवसीय कार्यक्रम ने राजीव गांधी विश्वविद्यालय दोईमुख, अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पासीघाट एवं अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज नामसाई के शोधकर्ताओं को भाषा दस्तावेजीकरण, डिजिटल आर्काइविंग, डेटा प्रबंधन और सांस्कृतिक अनुसंधान में उभरती प्रौद्योगिकियों को समझने के लिए शैक्षणिक और व्यवहारिक मंच प्रदान किया। इस कार्यक्रम का संयुक्त आयोजन रिवॉच काउंसिल फॉर डाइवर्सिटी एंड इनोवेशन यानी कोडिन नई दिल्ली तथा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के IKS डिवीजन द्वारा किया गया। ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 6 जिलों पापुमपारे, कुरुंकुमे, अपर सियांग, दिबांग वैली, अंजाव और लोहित के लिए अगले 24 घंटों में गरज के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है और तेरानाथम गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर के आर्ट्स क्लब और इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल द्वारा आज कॉलेज कॉन्फ्रेंस हॉल में नए सदस्यों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपने संबोधन में जूलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. प्रशांत नंदा ने न्यूरोसाइंस को रचनात्मकता से जोड़ते हुए व्याख्यान प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में भाग लेते हुए एजुकेशन विभाग के प्रमुख डॉक्टर बीके योमगाम ने विद्यार्थियों से क्लब की आचार संहिता का पालन करने, सहयोगी और अनुशासित बने रहने तथा आर्ट्स क्लब को अपने कौशल को निखारने में मंच के रूप में इस्तेमाल करने का आह्वान किया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

नगर केंद्र से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:55 हुए हैं। लीजिए पेश है एक देशभक्ति गीत गायिका लता मंगेशकर के स्वर में।

श्रोताओ, इसी गीत के साथ ही देशभक्ति गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। मीडियम एफ 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर और साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात के

ठीक 8 बज चुके हैं। निजी श्रोताओं, अब पेश है व्हाट्सएप मैसेज द्वारा पसंद किए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला फरमाइश हमें प्राप्त हुई है तोरोवाल नवनशहर पंजाब से। आप है गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी थांडी, डॉक्टर प्रियंका थांडी, डॉक्टर प्रशांत थांडी, डॉक्टर प्रियाम थांडी, बेबी वमिका और वानी थांडी। आप सबकी पसंद पर पेश है फिल्म ये रात फिर ना आएगी से, गायक महेंद्र कपूर के स्वर में। ओपी नायर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है SH बिहारी ने और इस गीत के बोल है मेरा प्यार वो है।

श्रोताओ, इस वक्त आप व्हाट्सएप मैसेज द्वारा पसंद किए गए फरमाइशी गीतों का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही आगे बढ़ाते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत। पजोनिया जलाउन उत्तर प्रदेश से आप है सत्येंद्र कुमार चौंसलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चौंसलिया। और मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से आप है मुकेश केशव, शीतल केशव, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तानवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म फकीरा से यह गीत। रविंद्र जैन द्वारा संगीत निर्देशन पर इस गीत को आवाज दे रहे हैं हेम लता ने। इस गीत के बोल है सुन के तेरी पुकार।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम फरमाइश प्राप्त हुई है कोपर गांव से। आप है सुरेश मलोदे, वर्षा मलोदे, श्रद्धा मलोदे और मनाशी मलोदे।

आप सबकी फरमाइश पर पेश है फिल्म खिलाड़ी से यह गीत अभिजीत और अलका याग्निक के युगल स्वरों में। अनवर सागर के लिखे बोल पर इसे संगीत दिया है जतिन ललित ने और इस गीत के बोल है वादा रहा सनम।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सबकी वचन फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा या रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से ही थोड़ी देर बाद, यानी रात के 8:15 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित अरुणाचल न्यूज रेल, रात के 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित स्पोर्ट्स कैन, 8:45 पर समाचार संध्या तथा रात्रि के 9:00 बजे सुनिए न्यूज़ @9। कृपया हमारे साथ बने रहें।

नमस्कार श्रोताओं, रात के 8:30 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की तरंगों पर खेल जगत का सबसे विश्वसनीय और आपका पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। उम्मीद, जज्बे और जुनून से सजे कार्यक्रम के आज के अंक में मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त जया भारती। श्रोताओं, आज हवाओं में अलग सा रोमांच है क्योंकि हमारे

0: भारतीय जाबाज वैश्विक मंच पर तिरंगा लहराने को पूरी तरह से तैयार है। आज की विस्तृत चर्चा से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खेल सुर्खियों पर। जापान के नागोया में 20वें एशियाई खेलों का भव्य और रंगारंग आगाज। परेड ऑफ नेशंस में मनु भाकर और पवन सहरावत ने गर्व से लहराया तिरंगा। टेक बॉल स्पर्धा के सेमीफाइनल में भारत की क्विंसी डिसूजा को निराशा मिली। हार के बावजूद जज्बा बरकरार, कल खेलेंगी कांस्य पदक मुकाबला। समरकंद शतरंज ओलंपियाड के तीसरे दौर में कल भारत ने दोहरी जीत दर्ज की और आज चौथे दौर की बिसात पर जंग जारी। और शिलांग में चल रही नॉर्थ ईस्ट जोन इंटरस्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप संपन्न हुआ। असम और मेघालय की टीम ने नेशनल्स गेम्स 2027 के लिए क्वालिफाई किया। श्रोताओं, सबसे पहले बात आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण की। बिल्कुल सही समझा आपने, हम बात कर रहे हैं एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह की। जापान के नागोया शहर से आज 19 सितंबर को इन ऐतिहासिक 20वें एशियाई खेलों का आधिकारिक और रंगारंग आगाज हो चुका है। लेकिन श्रोताओं, भारत का विजय अभियान आज से नहीं बल्कि कल से ही शुरू हो चुका है, इसलिए आज भले ही खेलों का औपचारिक उद्घाटन हुआ हो लेकिन हमारे खिलाड़ियों के हौसले तो कल से ही बुलंद है। और आज शाम जब नागोया के मिजोहो पार्क एथलेटिक्स स्टेडियम में परेड ऑफ नेशंस की शुरुआत हुई तो हमारे एथलीटों के चेहरों पर वो आत्मविश्वास साफ नजर आ रही थी।
1: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भारत, और सबसे आगे दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर और कबड्डी के सुपरस्टार पवन सहरावत। ये वो लम्हा है जो आपको अंदर तक खिला देता है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी भी एथलीट की जिंदगी में सबसे बड़ा समय, सबसे बड़ा लम्हा यही होता है जब वो तिरंगे को हाथ में लेकर के पूरी दुनिया के सामने चलते हैं।
0: पेरिस ओलंपिक की हमारी डबल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी के किंग पवन सहरावत ने पूरे गर्व के साथ हमारे तिरंगे को थामकर आत्मविश्वास के साथ साफ नजर आ रही थी। और जब हमारी कबड्डी के किंग पवन सहरावत ने पूरे गर्व के साथ तिरंगे को थामे रखा था और मुस्कुराते हुए 501 सदस्यीय विशाल भारतीय दल का नेतृत्व किया, उसके बाद उद्घाटन समारोह के बाद हमारे स्टार निशानेबाज मनु भाकर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: When I got to know yesterday, so I had all these flashback memories of my earlier days, and when I started, kabhi bhi nahi socha tha ki this is where I can reach in one day in my sport. So it definitely, it's like a very heartwarming feeling. It's I feel really proud, I feel really honored, and I really really feel so happy being chosen as the flag bearer of my homeland.
0: कबड्डी किंग पवन सहरावत ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
3: ये मेरे लिए बहुत प्राउडली मोमेंट, अभी भी मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि मैं अपने नेशन का फ्लैग अपने हाथ में लेके चलूंगा। मैं उनसे पहले भी एक बार मिला हूँ, काफी मोटिवेटेड एथलीट है। मेरे लिए भी एक प्राउड मोमेंट है कि ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ मैं फ्लैग बैरियर में साथ जाऊंगा, वुमेन का वो कर रहे हैं, मैन का मैं कर रहा हूँ, तो मेरे लिए भी एक अच्छा मोमेंट है इतनी बड़ी एथलीट के साथ जाऊँ।
0: श्रोताओं, रुख करते हैं खेल के मैदानों का। आज एशियाई खेलों के उद्घाटन की चमचमाती शाम से पहले मैदान पर हमारे एथलीटों ने पदक की पहली जंग भी लड़ी। दरअसल पहली बार एशियन गेम्स का हिस्सा बने खेल टेक बॉल में भारत की विश्व रैंकिंग 24 की खिलाड़ी क्विंसी जोआकिम डिसूजा आज महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में उतरी थी। हालांकि परिणाम थोड़ा निराश करने वाला रहा। इस प्रतियोगिता पर विस्तार से बात करने के लिए इस समय स्टूडियो में हमसे जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश। मुकेश, हमारे श्रोताओं को बताइए कि वहां पर आज इस प्रतियोगिता में क्या हुआ।
4: जी हाँ जया, नागोया सिटी हिगाशी स्पोर्ट्स सेंटर में आज टेक बॉल महिला सिंगल सेमीफाइनल में क्विंसी डिसूजा का सामना इंडोनेशिया की मजबूत खिलाड़ी एमा सुमाया से था। क्विंसी ने पहले गेम में पिछड़ने के बाद दूसरे गेम में गजब की वापसी की और तीसरे निर्णायक गेम में भी 4-1 की मजबूत बढ़त बना ली। लेकिन इंडोनेशियाई खिलाड़ी ने अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए अंत में पासा पलट दिया और 2-1 से मैच जीत लिया। तो

0: क्या क्विंसी के लिए पदक की उम्मीदें अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं?
1: बिल्कुल नहीं जया, भले ही आज सेमीफाइनल का नतीजा निराश करने वाला रहा हो, लेकिन हमारी खिलाड़ी का प्रदर्शन और जज्बा वाकई कमाल का था। और क्विंसी का मेडल का सपना अभी टूटा नहीं है। क्विंसी कल महिला सिंगल्स और मोहम्मद अनस इमरान बेग के साथ मिक्स डबल्स में कांस्य पदक के लिए दोबारा कोर्ट पर उतरेंगी और हमें पूरी उम्मीद है कि इस नए खेल में भारत का पहला ऐतिहासिक पदक जरूर आएगा।
0: बिल्कुल मुकेश, हार जीत खेल का हिस्सा है और असली मायने खिलाड़ी का जज्बा ही रखता है। और आज शाम जब उद्घाटन समारोह की परेड ऑफ नेशंस में हमारे तिरंगे को थामे भारतीय दल की अगुवाई पेरिस ओलंपिक की हमारी डबल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी के किंग पवन सहरावत ने की, तो खिलाड़ियों के चेहरों पर वो जज्बा साफ नजर आ रहा था। भारत के 501 सदस्यीय विशाल भारतीय दल के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं। श्रोताओं, अब बात करते हैं उस खेल की जो लगभग हर भारतीय के रग रग में बसता है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि भले ही एशियाई खेलों का उद्घाटन आज हुआ हो, लेकिन भारत का विजय अभियान कल से ही शुरू हो चुका है। कल हमारी विमेन इन ब्लू ने जिस तरह से मेजबान जापान को हराया वह वाकई शानदार था। भारत ने 8 विकेट की विशाल जीत के साथ सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है और सेमीफाइनल में भारत का मैच कल बांग्लादेश से होना है। इस प्रतियोगिता पर अधिक जानकारी के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला। विशेष, 8 विकेट की यह जीत और सीधे सेमीफाइनल का टिकट।
2: बिल्कुल जया, भारत रैंकिंग के आधार पर पहले क्वार्टर फाइनल में तो जगह बना ही चुका था, लेकिन जो 8 विकेट से एक तरफा मुकाबला जीता उससे सेमीफाइनल का टिकट तो मिला ही, लेकिन साथ ही साथ एक स्ट्रांग मैसेज गया है बाकी टीम्स को कि भारतीय गेंदबाजी बहुत घातक हो चुकी है। भारतीय गेंदबाजों की जितनी बात करें उतनी कम है। अभी हाल ही में हुए जो एशिया कप में भारत ने अपनी गेंदबाजी के दम पर पूरे टूर्नामेंट को एक तरफा बना दिया था और उसकी ही कुछ झलकियां जो है वो हमको कल देखने को मिली। श्री चंडी ने शुरुआत से ही दबाव बनाकर रखा और सर्वाधिक 4 विकेट झटके। उनके अलावा शेफाली वर्मा ने 2, जो कि एक पार्ट टाइम गेंदबाज है, दीप्ति शर्मा और शंका पाटिल ने 1-1 विकेट अपने नाम किया और भारत ने एक आसान जीत दर्ज की।
0: बिल्कुल विशेष, कल की जीत तो आसान रही, लेकिन अब असली परीक्षा कल है। सेमीफाइनल में भारत का सामना बांग्लादेश से होना है और बांग्लादेश की टीम को हम हल्के में नहीं ले सकते।
2: बिल्कुल जया, सेमीफाइनल का मुकाबला कल है और बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जो किसी भी दिन एक बड़ा उलटफेर करने का मादा रखती है। एशियाई परिस्थितियों में उनके पास बेहतरीन स्पिनर्स हैं जो हमारे बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। भारत के लिए चुनौती होगी कि वे कल के मैच की गलतियों को ना दोहराएं, खासकर पावर प्ले में बांग्लादेश के स्पिन आक्रमण से संभल कर रहें ताकि एक अच्छी शुरुआत भारतीय टीम को मिले।
0: बिल्कुल विशेष, और कल के नतीजों के बाद सेमीफाइनल की चारों टीमें तय हो गई हैं। क्रिकेट के इस शानदार स्थिति के बाद अब बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी की, जिससे भारतीय प्रशंसकों को मेडल की काफी उम्मीदें हैं। एशियाई खेलों में कल से हॉकी का महाअभियान भी शुरू हो रहा है। ये मुकाबले जापान के काकामिगाहारा में स्थित गिफू प्रीफेक्चरल ग्रीन स्टेडियम में खेले जाएंगे। हॉकी के अलावा अन्य बड़े प्रतियोगिताओं का शेड्यूल भी आ गया है। जैसा कि हमने कल ही बताया था कि ये शेड्यूल वीकेंड पर जारी किए जाएंगे और कल होने वाले प्रमुख प्रतियोगिताओं की जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शक्ति सिंह है।
3: जया, अगर कल मुकाबलों की बात की जाए तो हॉकी के भारत के कल मुकाबले खेले जाने हैं, जहां सुबह 7:30 बजे भारत की महिला टीम पूल बी में उज्बेकिस्तान से खेलेगी, जबकि पुरुष टीम पूल ए में इंडोनेशिया के खिलाफ 11:30 बजे अपना मुकाबला खेलेगी। बैडमिंटन कोर्ट में कल भारतीय महिला टीम अपने अंतिम 16 यानी कि प्री क्वार्टर फाइनल के मुकाबले खेलेगी, जहां सुबह करीब 11:30 बजे भारत का सामना कजाकिस्तान से होगा। क्रिकेट के मैदान पर भारत बांग्लादेश के साथ खेलेगा, सुबह 10:30 बजे मुकाबला खेला जाएगा। मार्शल आर्ट महिला ट्रेडिशनल में 60 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में सुरुचि तरियाल का मुकाबला जो है मंगोलिया की खिलाड़ी से होना है, यह मैच सुबह 7:10 पे होगा। वहीं पुरुषों के ट्रेडिशनल 77 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में वरुण सान्याल का मुकाबला खेला जाना, ये मुकाबला दोपहर करीब 2 बजे होगा। निशानेबाजी में कल कई भारतीय खिलाड़ी आपको निशाना लगाते हुए नजर आएंगे। जया, महिला 10 मीटर एयर राइफल क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल में इला वैनिल वालावेरिन, सोनम मस्कर और विदर्श विनोद सुबह 6:15 बजे पदक के लिए मुकाबला करते हुए दिखेंगे, जबकि महिला 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत फाइनल में इला वैनिल वालारविन, सोनम मस्कर और विदर्श विनोद सुबह 11:00 बजे क्वालिफाइंग करेंगे और उसके बाद पदक के मुकाबलों के लिए दाव पेश करेंगे। टेकबॉल में भारतीय महिला सिंगल्स टीम

0: अपना ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेगी, जिसमें क्विम्समी डिसूजा का मुकाबला युइना साकामोटो से होगा, जो कि जापान की खिलाड़ी हैं और सेमीफाइनल में प्रवेश किया है उन्होंने। ये मुकाबला सुबह करीब 6:30 बजे खेला जाना है। मिक्स्ड डबल्स में कांस्य पदक मुकाबला क्विम्सकी डिसूजा मोहम्मद अनस बेग और की जो जोड़ी है, इसका मुकाबला होगा हुआंग मी तान गुएन जिया निंग त्रियान, वियतनाम के इन दोनों खिलाड़ियों से। ये मैच सुबह 7 बजे खेला जाना है। तो जया, ये है कल के मुकाबलों का हाल।
1: बहुत बहुत शक्ति, बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति इस विस्तृत रिपोर्ट के लिए। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईची नागोया एशियाई खेलों में हिस्सा ले रहे भारतीय दल को शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और लगन ने देश का मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत को उन पर गर्व है और वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, अच्छा खेलें और देश का नाम रोशन करें। श्रोताओं, रुख करते हैं उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक शहर समरकंद का, जहां इस समय 46वें फिडे चेस ओलंपियाड का चौथा दौर खेला जा रहा है। कल रात जब हम कार्यक्रम के अंत तक तीसरे दौर का मैच की बात कर रहे थे, तब मैच निर्णायक मोड़ पर था और तब मैंने कहा था कि कभी भी परिणाम भारत के पक्ष में आ सकता है, और ठीक ऐसा ही हुआ। कल पुरुष टीम ने इटली को 3-1 से और महिला टीम ने ग्रीस को 3.5 के मुकाबले आधे अंक से हराकर समरकंद में भारत को दोहरी जीत दिलाई। कल रात अंतिम बोर्ड नतीजों में डी गुकेश और निहाल सरीन ने अपने मुकाबले शानदार तरीके से जीते, जबकि आर प्रज्ञानंदा, अर्जुन रिगेसी और महिला वर्ग में दिव्या देशमुख ने अपने अपने मुकाबले ड्रॉ खेले। लेकिन आज इस समय एक और अच्छी खबर आ रही है कि भारतीय पुरुष टीम ने राउंड 4 के बेहद कड़े मुकाबले में स्पेन को 3-1 से करारी शिकस्त दे दी है। और इस मैच का सबसे बड़ा आकर्षण रहे वर्ल्ड चैंपियनशिप के चैलेंजर डी गुकेश, जिन्होंने बोर्ड नंबर 4 पर स्पेन के दिग्गज और आक्रामक खिलाड़ी अलेक्सी शिरो को एक बेहद रोमांचक एंड गेम में मात देकर भारत की जीत पर मुहर लगा दी है। दूसरी तरफ महिला सेक्शन में हमारी भारतीय टीम मंगोलिया के खिलाफ भी बेहद मजबूत स्थिति में आगे बढ़ रही है, और जिसके अंतिम नतीजे थोड़ी ही देर में स्पष्ट हो जाएंगे। शतरंज के इन हमारे जाबाजों ने, इन शेरों ने साबित कर दिया है कि वे अपने स्वर्ण पदक बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अंत में बात करेंगे हमारे घरेलू खेल के मैदान की। शिलांग में चल रही नॉर्थ ईस्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप आज समाप्त हो गई है, और इस प्रतियोगिता की पूरी जानकारी के लिए सुनते हैं शिलांग से हमारी संवाददाता अनुमिता की रिपोर्ट।
2: 4 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट इंटर स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आज शिलांग के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में समापन हुआ। प्रतियोगिता के 5 इंडिविजुअल कैटेगरी में असम के खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक अपने नाम किए। पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के 270 से अधिक खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। ये प्रतियोगिता वर्ष 2027 में मेघालय में होने वाले नेशनल गेम्स की टीम कॉम्पिटिशन के लिए क्वालिफाइंग प्रतियोगिता भी थी। खिलाड़ियों ने इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता के दौरान अंडर 17, अंडर 19, सीनियर इंडिविजुअल एंड टीम चैंपियनशिप्स में हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में मिजोरम और मणिपुर ने 2-2 स्वर्ण पदक जीते, जबकि अरुणाचल प्रदेश ने 1 स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं मेजबान मेघालय को 4 ब्रॉन्ज मेडल्स मिले। आकाशवाणी समाचार के लिए अनुमिता दास, शिलांग।
1: बिल्कुल, और इसके साथ इस टूर्नामेंट के जरिए असम और मेघालय की टीमों ने नेशनल गेम्स 2027 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स स्कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल मैदान की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स स्कैन की ईमेल आईडी sportsscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। पश्चिमी रेलवे के उधना उकाई सोंगाद खंड पर 4 लेन

0: वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण को भी मंजूरी। दो दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में संपन्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम महाराष्ट्र तमिलनाडु और तेलंगाना में कल तेज बारिश की संभावना। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
1: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स Tier 2 और Tier 3 शहरों में हैं। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोलकाता में शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ सुकांत मजूमदार ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने विशाखापट्टनम में आयोजित 20वें रोजगार मेले में 200 नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुंबई में युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। एक रिपोर्ट।
2: इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि पुल के हिस्से में 91 करोड़ से अधिक रुपए की अनुमानित लागत वाले ओपन वेब गर्डर सम्मिलित होगा। 4 लेन रोड ओवर ब्रिज सड़क यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड को 25 किलोवाट की एक यूनिट से 25 किलोवाट की दो यूनिट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशनों पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत मध्य रेलवे के मोहोल, मुंधेवाड़ी, बाले, सोलापुर, होटगी जंक्शन, होटगी एक कैबिन, शाहबाद और वाड़ी जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग

0: बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नागालैंड के चुमाओ के दीमा में नागा यूनाइटेड विलेज में दो दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की।
3: यह सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था NEP 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियां और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा, पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। सम्मेलन में ये भी प्रस्ताव रखा गया कि पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री के विशेष वित्तीय पैकेज पर विचार किया जा सकता है। कोहिमा से असुनियों की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज की इस कड़ी में आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं और लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान करना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री खुद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्यों के साथ सीधे समीक्षा करते हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रगति ने कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी की वजह से होने वाली समस्याओं को दूर करने और तेजी से फैसले लेने में मदद की है। इससे अधिकारियों में जवाबदेही की भावना भी मजबूत हुई है। इस साल फरवरी में राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि प्रधानमंत्री स्तर पर विस्तृत निगरानी के कारण 85 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और उनमें तेजी लाने में मदद मिली है।
5: हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, हर महीने बैठा और लगातार उस काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बिठाया, हर एक की बारीकी से देखा और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीज का काम को गति मिली। देश की कितनी बड़ी शक्ति को अनलॉक किया हमने, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये हमने करके देखा है।
4: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बीबी नगर हैदराबाद की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अमिता अग्रवाल ने बताया कि प्रगति तंत्र की मदद से एम्स से जुड़े पानी और बिजली की आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने में मदद मिली।
6: कि हमारे पास दो मेजर इश्यूज थे, एक पावर सप्लाई का और एक वाटर सप्लाई, जो कि दोनों बहुत अहम होते हैं अस्पताल के लिए, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इंटरवेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प से ये प्रॉब्लम्स दोनों धीरे धीरे करके सॉल्व हो गए।
4: प्रगति प्लेटफॉर्म सहकारी संघवाद का भी एक उदाहरण है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र के विभिन्न मंत्रालय एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करते हैं। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति की 53 बैठकों की अध्यक्षता कर चुके हैं। आनंद कुमार के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की।
7: I think close to 8 cargo planes have arrived.
8: अब तक

0: लगभग 8 कार्गो विमान 130 टन राहत सामग्री लेकर आ चुके हैं। 50 से अधिक भारतीय कर्मी आज भी बचाव और राहत कार्यों में मदद कर रहे हैं, खासकर उन लोगों की जान बचाने और उन्हें निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो शायद अभी भी इन पनबिजली सुरंगों में फंसे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार मदद के मुद्दे को बहुत सकारात्मक रूप से देख रही है।
1: इस बीच भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाई, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ आपदा में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। नेपाल सरकार ने पिछले महीने विनाशकारी बाढ़ के कारणों की जांच के लिए 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 पद जीत लिए हैं। परिषद के यश डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने छात्र संघ चुनावों में परिषद की जीत पर बधाई दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू को आज पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वे लुधियाना में पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के पास उस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब मुख्यमंत्री भगवंत मान का काफिला वहां से गुजर रहा था। श्री बिट्टू ने बताया कि भाजपा पंजाब से जुड़े मुद्दे उठाती रहेगी और जब भी जरूरत होगी मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और कार्यालयों के बाहर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करेगी। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में कल तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मराठवाड़ा, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, कोंकण, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। टेक बॉल स्पर्धा के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की क्विमसी डिसूजा को इंडोनेशिया की सुमाया से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। क्विमसी कल कांस्य पदक मुकाबला खेलेंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी कल सेमीफाइनल खेलेगी। सेमीफाइनल में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। एक अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर आज मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ राधा अष्टमी मनाई। उत्तर प्रदेश के बरसाना, मथुरा, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र के अन्य हिस्सों में श्री राधा रानी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। 2-दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में सम्पन्न। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India, distributes more than 51,000 appointment letters at 20th Rozgar Mela. Railway approves provision of coverage version 4.0 on 607.7 route kilometers.